क्यों बराबर जो माई लव दैट ट्रक दैट्स अ कैची ट्रक व्हाट अ एनर्जेटिक ट्रक वी गोना कंटिन्यू नाउ विद द मोर एनर्जी एंड दिस वन